0: genio.
1: वो नहीं है, एक जगह वो लिखता है पाश कि मैं थकता हाँ गुंडियां दी सल्तनत उत्ते। मगर हिंदुस्तान के निजाम वो इंज पेश कर दे कि गुंडियां दी सल्तनत है, मैं ना तो थकता उसके कविता दी एक लाइन है। सेडिशियस पोएट सी गए कहे गई

आशा बनी जा रही, सब फोर्स इधर उधर कर रहे, हाई अलर्ट रहना। और उधर से कोई भी पत्रकार जो है, मतलब जो नक्सलियों को कवर करने जाएगा उसको सीधा मरवा देना, समझ गए? राजा सर, राजा सर, वो कल के ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके ठीक है, ओके।